0: को छ।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
0: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक। यति बेला बिहानको 7 बजे।

0: கோல்கேட் மேக்ஸ் பிரஸ் மிந்த்ரா பகாவ் தாஜகி ஜகாவ்.
1: विगत 22 वर्षदेखि निरन्तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त यस कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस पोखरामा
2: सर्टिफिकेट इन डेन्टल साइन्स,
3: सर्टिफिकेट इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी,
2: सर्टिफिकेट इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी
3: र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा 3 वर्षीय कार्यक्रममा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा स्वस्थ, शान्त एवं मैत्रीपूर्ण वातावरणमा अध्यापन गराइने।
2: हाम्रा विशेषताहरू: आधुनिक प्रविधिबाट सञ्चालित उपकरण सहितको प्रयोगशाला,
3: कम शुल्कमा सहजै पढ्न र प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन।
1: कोर्सको बारेमा विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ।
3: Excellence in Technical Education, Kantipur Institute of Health Sciences, New Road, Pokhara. Phone 061-588-364, 580-725.

0: विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेरचन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी,
1: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल,
2: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजु राज श्रेष्ठ, नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर, प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पीयूष गिरी, छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले, नाक कान घाटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ, कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, डाक्टर विशाल गुरुङ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमोल पौडेल,
3: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलिसिस सेवा र आँखा उपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
1: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, फोन 061 590 162 590 163।

0: गर्मी भाई के चीसो पीना
1: पीना लाई चीसो उठाओ हॉले
2: हॉले गर्मी मनाया
1: रिफ्रेशमेंट पा न्यूट्रिशन मिक्स
2: चीसो हॉले।

0: मौका यही हो।
1: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

सुन घना दो, बस सुन घना दो। खाली पद ते सुना सुना पन है, बड़ी बेचैनी ते कल्ला पन है। तन रूह कांप रही, मौत कही आलाप रही। कल्ला सुखदा सा रुकदा, प्राण मेरे।

0: বাটসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनी तोला
2: खनाई दीवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान महेंद्र पुलारी तोला
1: ए नई शाबा मार दुकान पो मोना नई प्रेसोलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टॉस टिकरी हार तान चनाई तो होनी सग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छाब पोपिम ओछे
2: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी मिशा वा चुवल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जग्गा मात्र आँगी रूपाकोट ज्योति सुनचादी दोकाने घिस शाखा पोखराई महेन्द्र पुलरी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताई रबा ताक रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्ने यामो
1: तोई मिल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचादी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि बिन्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला रातिको 9 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: पर्यटक की नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्राली सृजना चोक पोखरा विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार लिया जानकारी कराद
1: हमारा सेवा
0: हार्ट जोड़ने नशा तथा मेरुदंड रोग
1: जनरल सर्जरी सब प्रकार का ऑपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थायराइड तथा मधुमेह रोग
0: न्यूरो सर्जरी सेवा
1: बाल रोग
0: नाक कान तथा घाटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशन अत्याधुनिक माइक्रो डिब्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाटी रोग को अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घंटा एम्बुलेंस इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
1: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चोक कास्की
0: फोन 061 572 648 572 849

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको 10 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।